किया करता है। हर राम नाम खानिया, हर राम नाम सलाहे हर जप, हर भगत हर जन मंगिया, जन कहे नानक सुनो संतो, हर भगत गोविंद चंगिया। देहे कंचन जीन सुमिन आराम, जड़ हर हर नाम रतन आराम, जड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सोकने, गुर शब्द पाया हर नाम ते आया, वडभागी हर रंग हर बने, हर मिले सुवामी अंतर जामी, हर नव तन हर नवरंगिया, नानक वखाण नाम जाने, हर नाम हर प्रमंगिया। कड़ियाल मुखे गुर अंक सपाया राम, मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सोह हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया। देहे कोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुभाए, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह कोड़ी चढ़ हर पाया। राग वडहंस महला पंजवा, शंत कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद,

आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां रोवे बिरहा तन का अपना साहेब संभाले हां साहेब संभाल है पंथ निहाल है असा पे उठे जाना जिसका किया तिन्ही लिया हुआ तसे का पाना जो तिन कर पाया सो आगे आया असी के हुक्म करेहा आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां मरण न मंदा लोका आखिए जे मर जाना ऐसा कोए सेवो साहेब समर्थ अपना पंथ सुहेला आ गया होए पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आ गया मिले वडाई भेटे स्यों जावो सच समावो।

मरण मुन सासुरिया हक है, जो होए मरण परवानो, सूरे से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेख साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेख आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, बड़हंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लख्या पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरियां दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिसो चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिरजनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिरजिया बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया तू थिर करण हारो, जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिख लदया अवगुण का वण जारो, सदड़े आए तना जानिया हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी तो नहेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै हंस गया गहनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मर माइये महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलियो सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानिए फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे, हाउ मुठड़ी तंदे तावनिया फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कर कर कंत महेलिया रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना हाउ रह सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो, वड़हंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है कड़कड़ शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो दूर ना जानो, जिन एह रचना राची नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कह वखाणो, जिन जग थाप बताया जालो सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांधी कर हुक्म छडावन हारो, अज कल कर दिया काल व्यापै दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप पाए ओन।

ज्ञान में होनी मुठी, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रोवै उगणे आरी झूठी। पिर जग जीवन किसनो रोई है, रोवै कंत विसारे, सब जग आपो पायो नो आमन जान संसारे। सो पिर सच्चा सद ही साचा है, ना यो मरे ना जाए, भूली फिरे तन एणिया, रंड बैठी दूजे पाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आव कटे तन शीजे। जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजे, जमकाल ना सूजे, माया जग लूजे, लब लोभ चित लाए। सो पर साचा सद ही साचा, ना एहो मरे ना जाए। एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा समाले, पिर अंतर समाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। एहो तन रुले रुलाया, काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे। नानक सातन मिले मिलाई, पिर अंतर सदा समाले, एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले। वढांस महला तीजा। रोवे पिरे विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जानिया, सतगुर सेवै नाम समाले। सदा नाम समाले, सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, सबदे काल मार साची वरतार, फिर आवन जान ना होया। सच्चा साहेब सच्ची नाई, वेखे नजर निहाले, रोवे पिरो विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले। प्रभ मेरा साहब शब्द ऊंचा है, के मिला प्रीतम प्यारे, सतगुर मिली ता सहज मिली, पिर राखिया उरतारे, सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे, सतगुर ते पिर दिसै। माया मोह का कच्चा चोला, तित पैदै पग खिसै, पिर रंग नहीं पिर रंग राता, सो सच्चा चोला, तित पैदै तिखा निवारे। पर मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, क्यों मिला प्रीतम प्यारे। मैं प्रभ सच पछाणिया, होर भूली अवगणियारे। मैं सदा रावे पिर अपना, सचड़ै शब्द विच

बिन गुर प्रीत ना उपजै भाई, मनमुख दूजै पाए, तोह कुटै मनमुख कर्म करै भाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार, सदा हर के गुण रवै भाई, गुर कै हित अपार, आया सो प्रमाण है भाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई भाई, गुर सबदी मेलाए, सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई, पूछो ज्ञानिया जाए। मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए, हर जियो तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै भाई, नाए विसरिया मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे भाई, पवजल पार उतार, जग मै लाहा हर नाम है भाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे भाई, राम नाम लिवलाए, नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया, मरजन मैं रोवै ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हरा साधना आया, संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवट भागी, जिसनो वाप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों वाप गवाए। एहो जग अंधा सब अंध कमावै, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोर

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा के विख काटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम।

आई जिन अचरज सो बनाई रहाओ बोले साहेब कै पहाण दास बाणी ब्रह्म खाण नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय ते आए कर सही सलामत आए संतोख भया संसारे गुरपुरे लै तारे संताओ प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणई राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय और तारे तन सबे थोक सवारे गुरपुरे तुस दिया फिर नानक दुख ना थिया सोरठ महला पंजवा हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई गुरपुरे की वडियाई ता की कीमत कही ना जाई हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे सो जस तेरा गावै रहाओ तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरण आई मुख निंदक कै शाई सोरठ महला पंजवां

आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कत हूं नाही। साचे साहेब स्यो मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरा जमदूत ना आवै नेरा कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को समत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ पहरा नानक प्रभ शरण आए जन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकी सरनी पाई है दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाई है हर रस पीवो पाई नाम जपो नामो आराधो गुरपुरे की सरनाई रहाओ। तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूर्ण पाई नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करण करावन हरे अंतर जामी जन अपने की रखै जय जयकार होत जग पीतर शब्द गुरु रस चाख।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तसै अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही, सुख सहज आनंद घनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन घर आए सोभा सेती, पूर्ण होई आसा, पूरा गुर पूरी मत जां की, पूर्ण प्रभ के कामा, गुरचरणी लाग तरियो पव सागर, जप नानक हर हर नामा, सोरठ महला पंजवां, पयो किरपाल दीन दुख पंजन, आपे सब ठाटी, खिन मैं राख लियो जन अपना, गुरपूरै बेड़ी काटी, मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है, सगल कलेस मिटै इस अंते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ, जेते जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उच्चा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उज्जल पए दरबारा, सोरठ महला पंजवा, सिमरो अपना साई, दिन सरैन सत्याई, हाथ दे जन राखे, हर नाम महाराज चाखे, अपने गुरु उपर कुर्बान, भय किरपाल पूर्ण प्रभ दाते, जी होए मेहरबान, रहाओ नानक जन सरनाई, जिन पूर्ण पैज रखाई, सगले दुख मिटाई, सुख पुंचाओ मेरे पाई, सोरठ महला पंजवा, सुनो बिनंती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे, राख पैज

आओ सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे तहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एको अंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वरगाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत तन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारे ओ अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल भयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरै पारा सो

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सोनो निमख ना ही बसावै। पर तन पर धारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नान पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागियो दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरकाओ संग छाड़ सब भागे।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर स्यों बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाता लिया कास तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हरनाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़ै जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सह सुबाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हौ मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का ईश्वर नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचै, जिन हर

आओ गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चितलाए सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई हरि आप वसै मन आए फिर का हुक्म न जानी पाई सा कुलखणी कुनार मन अठकार कमावनी पाई विणना में कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चे बैराग आंदन राते गुण रवै पाई निरपव गुर लिवलाग सबना मार जीवाल दा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिसकी वड्डी है दात मनमुख मैली डुमनी पाई दरगै नाही थाओ गुरमुख होवै ता गुण रवै पाई मिल प्रीतम साज समाओ एत जन्म हर ना चेत्यो पाई क्या मोहदेसी जाए किड़ी पवंदी मोहायोन पाई बिख्या नो लोभाए नाम समालै सुख वसै पाई सदा सुख सांस शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ महला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिनै यो पाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिया क्यों देखिए पाई करता एक या कथ गुर गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दानो दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किश है पाई नौनिद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवै पाई ऊंचा गमया पार जी जंत प्रतपाल दा पाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा भेटिया पाई शब्द मिलावन हार सच्चे चरण सिरेविए पाई परंप हो वै नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै प्रगास गुर बचनी सुखी उपजै पाई सफर सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िया पाई होई है सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिया चूर करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावे ता मेल ले पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिए पाई हृदय होवे प्रगास प्रगट भया प्रताप पाई मौल्या तरत आकास गुरपूरै संतोखिया पाई अहिंस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीविया पाई निचर पाया था ओ जिस पर तीत न आवे पाई सो जीअड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहेब पाई हौ तिसकै बल जाओ ओ निर्गुणी आरे पालदा पाई दे निथावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाई गूढ़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करवाओ तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਨ ਅੰਗ ਅਪਾਰ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਂਗ ਦੀ ਪਾਈ ਜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕੱਟਣ ਹਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ ਤਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਆਰਾ ਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ

मिठा करके खाया प्यारे तिन तन कीता रोग कौड़ा होए प्रतिष्ठिया प्यारे तिस ते उपजिया सोग।

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पा प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कून न चली नाल सतगुरु जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंग मसादे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्मिया फारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहू डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा, हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा, सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म प्रवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसर सही पुरख सुजान, कुल उधारे अपना सोजन होवे प्रवान, गुरमुख मोए जीवन दे प्रवान है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया। श्लोक महला तीजा, पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेत्यो से बहन न मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोका विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा, से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार, मनमुख आप स्वार्थी कार्ज ना सके सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह बदाया, विच हमें लेखा मंगिए फिर आवे जाया, जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चितलाया बिन्ना मैं जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिन्ना कौ मिलिया जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया, अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खोवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया रसना हर साध आया, सबदे ही ना उपजै सबदे मेल मिलाया, बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख्या गम है,
कहो कित बिद पाई है तिस रूप ना रेख्या दृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है। गुरपुरै वे खा लिया गुरसेवा पाई है श्लोक महला तीजा। ज्यो तन कोलू पीड़िया रतना पूरी डेह जियो वन्या चौखनिया सच्चे संदड़े नेह। नानक मेल न चुकई राती अतै डेह महला तीजा। सज्जन मेंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यो मां जीठे कपड़े रंगे पी पाहे। नानक रंग ना उतरै ब्याह न लगै के हे पौड़ी। हर आप वरतै आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर तंदै लाएंदा। एक ना भगती लाए एक आप खवाएंदा एक ना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा। जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएंदा श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवा अपना हों तिन बलिहार जाओ। महला तीजा मनमुख मान्या जित है दूजे लगै जाए। तिसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए। एह मन वस ना आवई थके कर्म कुमाए। पेख तारी पेख कर थके अड़सठ तीर्थ नाए। मन की सार ना जाननी हम मैं परम पुलाए। गुर प्रसादी पौ पया वड़ भाग वस्या मन आए। पै पया मन वस होवा हम मैं शब्द जलाए। सचरते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए। सदगुर मिलिया ना हो पाया नानक सुख समाए पौड़ी। एह भूप तराने रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग सुंभ खिन मैं लै जावना। चलदिया नाल ना चल सिर पाप लै जावना जा पकड़ चलाया काल तां खरा डरावना। ओ वेला हथ न आवै फिर पछतावना श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलना पाए नी जमै तै मर जाहे। सहसा रोग ना छोड़ई दुखी मैं दुख पाहे। नानक नदरी बख्श लेहे सब दे मेल मिलाहे महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरै दुह चारण बदनाओ। नानक गुरमुख बख्शिया से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी। जो सेवै सत मुरार से भवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया। से दरगै पहदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर से वैसे ही पुरख जिन्ना हर तुद मया। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पौ गया श्लोक महला तीजा। थाले विच तैं वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादे मन तृप्ती है पाई है मोख द्वार। एहो भोजन अलब है संतो लब्बै गुरविचार। एह मुदामणी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखिए और तार। एह मुदामणी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल। नानक जिस बजाए सो बुझ सी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा जो तोर मेले से मिल रहे सतगुर से उचित लाए। आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खुआए। नानक विण कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। बै सखिया जस गावै गावन हारिया
ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਓ ਨਿਤ ਹਰ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨਾ ਹੋ ਵਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ ਬਲ ਜਾਓ ਪੌੜੀ ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜੋ ਹਰਿ ਰਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਤਿਨ ਡਰ ਸਟ ਕਤਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕੇ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਵਿੰਡਿਠਾ ਕਿਆਸਾ ਲਾਹੀਐ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈ ਅਨ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ ਕੂੜ ਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵਈ ਜਿਸਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਈ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਦ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾਂ ਚੌ ਚੱਕਿਆਂ ਚੌ ਵਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਾਉ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਪੀ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟਣ ਆਵਈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹਰ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਅਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਤ ਕਰ ਕੋਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਕਰ ਸੋ ਬੂਜੈ ਹੋ ਵਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सच्चा शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया, दुख लगा बहुता आए अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगै खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मंत्र मुख हर बोले साहर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा। हस्ती सिर ज्यो अंकस है अहरण ज्यो सिर दे, मन तन आगै रख कै उबी सेव करे। यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करे। महला तीजा। जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते प्रवान, नानक कोले उधार अपना दर गै पावै मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु में लाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कर लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना भाव गुरु देवाइया, गुरसिखा एको प्यार गुरमिता पुता पाइया। गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जी वाइया। श्लोक महला तीजा। नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंदले, अवरे कर्म कमाए जमदर बदे मारी है फिर विष्टा माहे पचाहे। महला तीजा। नानक सतगुर सेवै अपना सेजन सच्चे परवान, हर कै नाए समाए रहे चुका आवन जान। पौड़ी तन संपै माया संचिय अंते दुखदाई, कर मंदर महल सवारी है के साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है किते काम ना आई, जन लाभो चित हर नाम से ओवंत होए सिखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा। बिन करमै नाव ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए, नानक नजर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मिलाए। महला पहला। एक दज्जै एक दबी है एक ना कुत्ते खाहे, एक पानी विच ओ सटी है एक पी फिर हसन पाहे। नानकेव न जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैदा माया सब पिवित है, जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते, तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख

बाजी गर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजी गर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पव सागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुदारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पैली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत न कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप न देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना, अद शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी, भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे, सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाय।

तो हम भय है चकोरा माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहाओ जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीर्थ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोरे अवर संग तोरी जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकरे और ना देवा तुमरे भजन कटे जम फासा भगत हेत गावे रविदासा जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा बंके बाल पाग सिर डेरी एहो तन होएगो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कहरवदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। हरवदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा काय औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन, पाव मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कह ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत, सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जैं देखा तैं सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार रहाओ, अंदन साहेब सेविय, अंत छिडाए सोए, सुन सुन मेरी कमनी, पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा, सदगुर बाण जाओ रहाओ, सरबंग साचा एक है, दूजा नाही कोए, ताकि सेवा सो करे, जा को नदर करे, तुदवाज प्यारे केव रहा, सा वड्याई दे, जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए, जिसे आगे प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहब अपना, अवर न जाचों कोए, नानक तांका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए, साहेब तेरे ना विटाओ, बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हां एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिन मैं तसरे वो, जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार, देख के ते के दिना रहाओ, सास मां सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है, सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किश पाई है, पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चेतना किया, कपटी कपट कमाना। जम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक, किस सुनिया किस कही है, भाल रहे हम रहन ना पाया, जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी, सिवरिया नहीं जाए, तपह आओ जियड़ा बिललाए, सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म ना पाया जाए, क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहाओ, वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतिने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तै रया समाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्से साचा सोए, हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल, जैसी नदर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रह लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करै, अंतर की दुबदा अंतर मरै, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागै, फिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवै प्रगास, ताते बिख्या मैं रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करै,
ਜਿਸਕਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਆਗੈ ਧਰੈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਮਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈ ਤਨ

जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम पाओ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिव लागी रहाओ, संत जना की जात हर स्वामी। तुम ठाकर हम सांगी, जैसी मत देवो।

समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी नानक हर पय है सिखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावै जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामै नाम हर जस ऊत मुकाम जो गावै सुने तेरा जस स्वामी हम तिनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हों पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हरि उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मानो सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुखी उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी वडपागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना तनासरी महला चौथा।

करें एक दात सबको तुझ ही विच है मेरे सहा तू ते बाहर कोई ना है सब जी तेरे तू सब सदा मेरे सहा सब तुझ ही माहे समा है सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा बस कीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करे सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यों भावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंदो अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की एक ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रप बिनहर कहाँ आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहु नारी पर गृह जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावे जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बने आवे जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसाओ रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आया चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरे कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग देख

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे विश्राम निद पाई। तुम करो दया।

जा कै संग तेरे बंधन छूट गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कश पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जा को कृपा कीजै।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाहीं चलना, जा को रे करम पल्ला तिन उठ गई संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजल तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा कार अठवा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बस।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई नाम ने दरिद सिद्ध हार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई गृह बार ठाकर भगतन का रव रया सर्व ठाई रहाओ। ता को कोय न पहुंच नहारा जा कै अंग गुसाई जम की त्रास मिटै जिस मृत नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्व देह गर्भ है पूमवंत अभिमानी राजा जन सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है जैसा बेत तैसा हुए वर्त है अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पय के आसर सरन सरन कर आए संतानुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाए। तनासरी महला पंजवा जा कौ हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरनी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ। जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनासरी महला पंजवा जतन करै मान खुडह कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी हो अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन के पल से ही पूरा सहा नाम व्यवहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो रखन हार दयाल सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने ऊपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंत्र राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात। सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने सादारी। सागत किया वरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ सिओ लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम सिओ मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा।

आओ वड़े पाग पेटे गुरदेवा कोट प्राद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंधन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जन

जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डराओ। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरह। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यो उदर भरो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हाँ पतत तरह। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदिया एको ओंकार। सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। हर रस चुग चुगै प्रभावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै। क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए। रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पै निरंकारी। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। सरवर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सह समाए। सरवर मैं हंस, हंस मैं सागर। अकथ कथा गुरबचनी आदर, सुन मंडलिक जोगी बैसे। नारना पुरख कहो को कैसे, तिर पवन जोत रहे लिव लाई। सुर नरनाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूला नाथा दारी। गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वछल पै काटन हारे। हमै मार मिले पगतारे, अनक जतन कर काल संताए। मरण लिखाए मंडल मैं आए, जन्म

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मनपति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचे साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया प्रवाण नात स्मरण आवन जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाई बिन गुर भेटे मरियाई जाइए रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर साच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहुपेखै घट पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पयावै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए।

कोई असोरे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावे पड़े रे सगल बेद नह चूके मन भेद एक खेना तीर है मेरे करके पंचा कोई असोरे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय संचा जे तेरे तीर्थ नाए अहम बुद्ध मैल लाए।

गुरप्रसाद को नेत्रों पेखै मन अठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखैदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राए काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानण।

हमरा मान तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधे आई। अजा मालो गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई बारह जो जन छत्र चले था, देही गिरज न खाई सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए कृपा करी जने अपने उपर, नाम देव हर गुण गाए दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो सत्र दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरमो ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो आतरंग रूडो मेरो रामैया, रहाओ ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यो तरणी कौ कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले का हूं डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला,

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे, दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दुक्रिस्त सुकृत थारो करमरी रहाओ, संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मफीट सरी, बिसव का दीपक स्वामी, तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ तांचे बादवा, कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी, तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी, कर्म कर कपाल मफीट सरी, अमृत शशि तेन लक्ष्मी, कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं, कर्म कर खार मफीटसरी, दादी ले लंका गाड़, ओपाड़ी ले रावण बाण, सल बिसल आण तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीटसरी, पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति।

रामा भगत रामानंद जानै पूर्ण परमानंद बखानै मदन मूर्त पैतार गोबिंदे सैन पणै पज परमानंदे पीपा।

काया बहु खंड खोजते नवनिध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा परण वै परम तत् है, सतगुरु होए लिखावे। तन्ना गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया शादन निकाया, नाज मंगो सत सीका। गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। जय श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरे हीर है, रत नाम हर बसिया, गुरहा तरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर

मिलायो गुर साधु गुर मिलिया हीर पराखा रहाओ। मनमुख कोठी अज्ञाना देरा तिन कर तन्ना लाखा ते उजड़ भरमोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा। हर हर साध मेलो जन निके हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे भाग तुम पाखा। जिह वाक्या गुण आख वखाण तुम वड्या गुंगड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जय श्री महला चौथा हम बार कछु न जाने गत में तो तेरे मूर्ख मुगदे आना। हर कृपा तार दी जय मति उत्तम कर ली जय मुगद सियाना। मेरा मन आलसिया गुलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिर साधु कपट खुलाना। रहाओ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना। बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकर जो अमली अमल लुबाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना। तिन हम चरण सिरे वै खिन खिन जन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकर जन बिछड़िया चरी मिलाना। धन धन सतगुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया। हर रसक रसक फल लागबा माया पयांग ग्रस्यो है प्राणी। गुरबचनी बिसहर काढ़बा मेरा मन राम नाम रस लागबा। हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर चाखबा। रहाओ तन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु ले उन मन लागबा। तृष्णा यगन बुझी सांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाए बा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुरसाद पग सेवै। हम हर मीठ लगाए बा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दिवाए बा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदय नाम ना बसेओ तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुनी दे फिरे बिन नामे ओए खप खप मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रभु धारी गुर ज्ञान दियो मन समझा। रहाओ हर कीर्त कलयुग पादी उत्तम हर पाइये सतगुर माजा। हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडभागी सब किलिख गए गवाजा। सतगुर साहो पाया वरदान हर किए बहु गुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन हर उर तारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जय श्री महला चौथा सतसंगत साध पाई वडभागी मन चल तो भयो अरूड़ा। अनहत धुन वाजे नित वाजे हर अमृत धार रस लीला। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरा मंत्र प्रीत लगाई सतगुरु हर मिलियो लाए च पीड़ा। रहाओ साकत बंद पय है माया बिख संचय लाए ज कीड़ा। हर कै अर्थ खर्च न साकै जमकार सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहुसरदा लाए मुख धूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावै हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साजना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध गुरमिल साधु पाखान हरियो मन मूड़ा। जय श्री महला चौथा कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगमा पारा जिस सिमर दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उर तारे।
ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੋ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਮਧ ਸੂਦਨ ਹਰ ਮਾਧੋ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮਿਲੋ, ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮਿਲੋ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ। ਹਰ ਹਰ

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा, हर हर

मोको तार कृपा मिली है गुरदाते हर नानक भगत्यो महाराम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वासे आवै, मंतन हरि ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा कर मादो,

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त, आपे नामो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर सम्बन्ध मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महा।

कहया ना माने सिर खाक शाने जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंगया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अग्नासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच। पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई। करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक अरचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना बिनासन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़ै थाए। नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए। पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार। उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण। खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माने जिस संग तै स्यों लाइय नेहो। सो सहो बिंद न विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग। गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग। हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए विजोग। साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग। सलोक कुटम्ब जतन करण माया अनेक युद्ध में। हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत। साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए। कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत। जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत। सलोक कोड़दान इस नानंग अनक सो दिन पवित्र तै। उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते। ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे। मन वसंदड़ो सच सहो नानक हब्बो डुखड़े उलाहे।
ਪੌੜੀ ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਉ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਈ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਨ ਮਰਨ ਪੈ ਕੱਟੀ ਹੈ।

तेरा सदड़ा सुनी जै भाई जेको बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना हो वही जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कंडिये जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेट ता सहसा टूट तावत वर्ज रहाई है निजर चर सहे तुन लागे कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजे तो निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। और

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शिपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए। जन नानक तिन को वंदन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या। जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे। जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मोहकारा। से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक पवे इशारा। जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीड़ी आद जुगाद बखीली किने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है, तिथे हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। हर तन संचिय पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाय। हर तन कित ना पाई, हर रतन का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वाके हर तन लया ना जाई। हर तन रतन जिवे हर माणक, हर तन नाल अमृत वे लैवत। हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वे लैवत का बीजया। भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हालत पलत हर तन की, भगता को मिली वडियाई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा। एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी जमदूत, किसे का गवाया ना जाई। हर तन का उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई। सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई। हलते विच सागत दुहेले पए, हथों छुड़क गया अगे पलत सागत। हर दरगह टोई ना पाई, इस हर तन का साहो हर आप है संतो। जिसनो दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तन का तोटा कदे ना आवई। जन नानक कौ गुर सोजी पाई। सूही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवै। सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णिया। जिसके हृदय वसिया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान। रहाओ सो सतगुरु सा सेवा, सतगुर की सफल है। जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना। अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सोने फल सब अगियान।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकाऊ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा तू करता सब किछ आपे जाने, क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहेब तू अंतर की बिद जाने, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड़ियाई तू है जाने, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विच हम मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हम मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हम बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो, नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो, सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किछु ना होवै, ज्यों हर पावै त्यों रखिया, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों पावै तिवें बख्स रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुदे आपे, तुदे आपे कर लाया, जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया, पंच तत् कर तुद सिरठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै, एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मन मुख करै से रोवै, हर की वड़ियाई हौ आख ना साका, हौ मूर्ख मुग्द नी जान, जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवां कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक ओंकारा, कवन रूप दृष्टियो बिनसायो, कत गयो ओ कत आयो रहाओ,
ਜਲ ਤੇ ਉਠੈ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਣਕ ਭੁਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰਾ, ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ, ਘਟ ਫੂਟੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ, ਭਰਮ ਛੂਟੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਧੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

महाराज तेरी सरना पूर्ण दयाला तुझबन कमन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पति आरै कछु ना पाइय साच लगै ताह मैं जाइय जिसनो लाए लय सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुरमत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुइ कर जोड़ करो अरदास तुद पावै तायाणै रास कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभ सदा ते आए सुही महला पंजवा तन सुहागन जो प्रभु पछानै मानै हुक्म तजै अभमानै प्रेसे राती रलिया मानै सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ सखी सहेली कौ समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै सा सुहागण अंक समावै गर्भ घेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहन विहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करीजे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहया भरपूर जन नानक गावै देखा दूर सुही महला पंजवा गृह वस गुर की ना हो कर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस प्यासी पिरको लोड़ी कवन कहां गुण कंत प्यारे सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिंगार पो अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा पिर कर आवे गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रभ ताई खोजित चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे ग्रह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सदजा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिले सुपागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै फिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै फिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगमे अपारे क्या सेवक मावां क्या कहरी जावां बिदगित पावां दरसारे। मित नहीं पाईए अंत न लहीए मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक को गुर कृपा तारी प्रभ हाथ दे निस्तारे। सुही महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महल ना पावै कहतो पहुता। जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठीसा रहाओ। पेख दिखावै सच ना कमावै कहतो महली निकट ना आवै। अतीत सदाए माया का माता मने प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिना सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझैना याना माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा साज जना का दर्शन दीठा। कबहु ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिखे नाद करन सुन पीना हर जै सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईए जौ होइए रेना जिसे बुझाए तिस नाम लैना रहाओ। सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै। भरमे पूला सख्त फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ। जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवा।

संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा कै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जमदूत बिदारे। जा की तीरक इस मने सुधारे, जा कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बाद सहा सहा वापारी मरना, जो दिसै सो कल खरना। कूड़ै मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। किरपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा, घट घट अंतर तो

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊठ सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताका हो जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा। जा कै सिमरन कछ भउ ना ब्यापै।

घुड़सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरतो निश्चल पावे थाओ। सो साहो सेव जे टूट ना आवै, खात खर्चत सुख अंद विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवां, गुर पूरे जपै दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवां, से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे,

जिस कृपा करे बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवां, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवां, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पाप तजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवां, घर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदै रचियो मूड़ा।

दर्शन कह लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हार, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलोबाए। सब किस तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तन, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते, जीहूं ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखाई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां, कर पंजवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया, निज मंदिर प्रिया। तहां आनंद करिया, न मरिया न जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी। मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया। ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया। गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा, कर सेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बेनंतियां। मिलै नाम आधारा, तुठा सच्चा पात साहो। ताप गया संसारा, भगता की टेक तू। संता की ओट तू।
ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ ਸਾਈ ਭਗਤ।

तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूर्ण हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथा हुआ पारे अति ऊंचा, कोई अवर ना तेरी पाते, ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते। दिन रहन सास सास गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा। सूही महला पंजवा, विसर नाही जे तू कबहू, सो थान तेरा केहा। आठ पहर जे तुद ते आई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हाँ सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवदूता, तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का। सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौ वरना कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई प्रमानै, ओए राम नाम रंग राते। तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई, भगतां बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता कै नेण ना आवै। जन्म जन्म का विछड़िया होवै, तन हर स्यों आन मिलावै।

जन की महिमा केतक वर्णों जो प्रभु अपने पाणे कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे।

प्यास चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक परभाषा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राए मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्ब निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहूं काची दे आणी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हम बल जाई केसा का

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

तिन मुख नाम न उपज दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबी है सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होनिया गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुच्ची है बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर ते आ सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया। चले जन्म सवार वखर सच लै, पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ। मन तन सच सलाहे साचे मन पाया, लाल रता मन मानिया गुरपूरा पाया। हौं जीवा गुण सार अंतर तू वसै, तू वसै मन माए सहजे रस रसै।

मूर्ख मन समझाए आखौ केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीत में आपना, जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना। मन मुख परम पुलाना, ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा, मन तन भंग है। गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास, जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास, हर गुण गावसी। सूही महला पहला, ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाइयै, त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाइयै। बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हो मैं आवै जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखनहार, हर नाम ते आईऐ मेलै तुझै रजाए, शब्द कमाइऐ। तू कर कर वेखै आप देह सो पाइऐ, तू देखै थापो थाप दर भी नाइऐ।

मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रहन लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है गुरचरणी लागे आए। अकथ कहानी प्रेम की को प्रीत में आखे आए। तिस देवा मन अपना निम निम लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान। सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए। ओह अबनासी पुरख है समय रह समाए। राम नाम तन संचया साबत पूंजी रास। नानक दरगह मन्या गुर पूरे साबास। राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां। कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहे हो बिखिया कै संगा। मने व्यापत अनक तिरंगा। मेरे मन अगम्य गोचर कत पाइए पूर्ण परमेश्वर रहाओ। मोह मगन में रहया व्यापे अतृष्णा कबहू नहीं त्रापे। बसै क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान ना सूजै महा गुबारा। प्रमत व्यापत जरे केवारा जान ना पाइए प्रभ दरबारा। आसा अंदेसा बंद पराना महल ना पावै फिरत बिगाना। सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यों जल बिन मीना। कछु सियान पयुगत ना मोरी एस एक आस ठाकर प्रभ तोरी। करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे। भयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया। रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवां। कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिथन मोह अग्न शोक सागर कर कृपा उदर हर नागर। चरण कमल सरनाय नारायण दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत भय मेटन साध संग जमदूत ना भेटन। जीवन रूप अनूप दयाला रमण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापै रोग रूप माया ना व्यापै। जप गोबिंद संगी सब तारे पोहत नाही पंच बटवारे। मान बच क्रम प्रभ एक ते आए सर्वफला सोई जन पाए। तार अनुग्रह

अंत प्रभ सोई, नानक तिसबिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया करनावा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन डिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लायन प्रभ सिओ रंग जियो। तिन सों प्रीत न टुटई, कबो न हो वै भंग जियो। पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपै मन मित जियो रहाओ। देखे सुने ना जानई, माया मोहया अंद जियो। काची देहा विनसनी, कूड़ कमावै तंद जियो। नाम ते आवै सेजन चले, गुरपूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनों करता विसरै, तिसै विछोड़ै।

मानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरी है भव जल तरी है जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजे जिसला वह सह त्यानो नानक शरण पया हर द्वार हों बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सद गुरबाणा सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसके बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जी हो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करने हारे उपजया

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंधप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोपरा मेरा सर्व रया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सतगुरबाणा। ऐसा गुरवट भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम, जन्म जन्म के किल वखि उतरै हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है गुर चरणी लागे परम पौ भागे, मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै, नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसे आए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मेरे सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वह जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई। परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम, कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना। हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहिते आना, काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभ कृपा कीजै हर गुण सुनिए अबनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग। एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम। एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम, मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला। सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकर दीन दयाला।
मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सोही महला पंजवां हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावै राम सिमर सिमर।

कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान है अवगुण को न चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हां बिसम भई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आद अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सबहू ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरण आई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर नेह चल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अबनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन ध्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया कर अपने मोही दूजै पाए मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उतार आग्याकारी सदा सुहागण आ मेली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सुहवीए निमाणी है सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचाए उन आकाश पताला हुक्मे तरती साजिया नो सच्ची धर्मशाला आप उपायख पाएंदा सच्चे दीन दयाला सब नारिक संभाहेंदा तेरा हुक्म निराला आपे आवरदा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सुहबता सोहागणी जा मन लह सच नाओ सतगुर अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही था ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वही एन सलागे पाओ नानक सोहागण का क्या चहन है अंदर सच मुख उजला खसमै महे समाए महला तीजा लोका वेह सुहवी सुहा वेस करी वेसी सह ना पाई है कर कर वेस रही नानक तिन्नी सह पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी ज्योतिष पावै सो थी है इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सचे लख्या पारा।

धर्म दलाल पाए निशान, नानक नाम लहा प्रवान। कर आए वजी वधाई, सच नाम की मिली वड्याई। महला पहला आराती होवन कालिया, सुपेदा से वन। देहो बग्गा तपै कणा, कालिया काले वन। अंधे अकली बाहरे, मूर्ख अंध ज्ञान। नानक नदरी बाहरे, कबे न पावे मान। पौड़ी काया कोटर चाया, हर सच्चा आपे। एक दूजे पाए खोआया, न होमै विच वे आपे। एहो मानस जन्म दुलंब सा, मनमुख संतापे। जिसिया बुझाए सो बुझ सी, जिस सतगुर थापे। सब जग खेल रचायो, न सवरत आपे। श्लोक महला पहला। चोरा जारा रंडियां, कुटनियां दी बाण। वेदीना की दोस्ती, वेदीना का खान। सिफती सार न जाननी, सदा वसै सैतान। गदो चंदन खोलिए, पीसा हुस्यो पान। नानक कूड़े कते है, कूड़ा तनिया तान। कूड़ा कपड़ कच्ची है, कूड़ा पहनन मान। महला पहला। बांगा बुरगू सिंगिया, नाले मिली कलान। एक दात एक मंगते, नाम तेरा प्रमाण। नानक जिन्नी

आओ तब लग प्राणी तसै सरेवो, जब लग कट मैं सासा, जे कट जाए ता पाओ ना जासी, हर के चरण निवासा, जिसको शब्द बसावे अंतर, चूकै तसै प्यासा, हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै, मन जन टाले पासा, जो जन जान भजै अवगत कहो, तिनका कछु ना नासा, कहो कबीर तेजन कबो ना हारै, टाल जो जाने पासा। सूही ललित कबीर जीओ, एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगै हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला, हर के लोगा मोको नीत डसै पटवारी, ऊपर पुजा कर मैं गुर पै पुकारिया, तिन्हों लिया उबारी, रहाओ नौ डाडी दस मुंसफ धावे, रैयत बसन ना देही, डोरी पूरी मापै नाही, बहु बिस्टा ला लेही, बहत्तर घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुखरलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपक है, सो कत जाने पीर पर आई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवन अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

रजाई, जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुझते, तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब, मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुद पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहों बेगाना, पौका स्तंताई, भगतहीण नाक जे होएगा, ता खसम नाओ ना जाई, बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म नायावा,

सगल सिंगार करे नहीं पावै, जां होए कृपाल तां गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिसे आया साध, जो गुंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुन गाए। दुर्त गया हर नाम ते आए रहाओ, सबनी थाई रव्या आप। आद जुगाद जाकावड़ प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप। गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई बूठे। सब सुख पाए सदगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ रखवाले। जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रतपाले। बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे। अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी शरणाई। कर कृपा हर चरण ते आई, दया करो बसो मन आए। मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ, प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़। हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे। जाके संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मंतन आधार। बिसरत नाम हो तनशार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज। हर बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत। बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत। नानक भगतन कै कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा। कर दूजा यानड़िए कै कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी। सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की। जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम आराध्य नाम वखाणे। हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे। पूरे कर्म कुमावा, नानक की बेनंती स्वामी। तेरे जन देखण पावा, वडभागी से काढ़िया प्यारे। संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिया निर्मल। मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिया प्यारे। चूके जम की काने, तना प्राप दर्शन नानक। जो प्रभ अपने पाने, ऊंच या पार।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन धन अर्पो सब अपना, कमर सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तो पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिय। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते

गुण गावो नित राम के। ए अवखद जोग आए बसो कर देश मैं, एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवा काहू संग न चल ही माया जंजाल, ऊठ सिधारे छत्रपातो संतन कै ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध कौ बिनसना ए तुरकी ढाल, बहजोनी जन्म मरै बिखिया बिकराल। सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा सह समाध आनंद सुख, पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ। जय जय कार जगत्र मैं लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघ्न न थिया। जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा कर पंजवा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार, बिनसत बार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे सत देख बिचार, से सतक गिरि जोगी तज गए कर बार रहाओ। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेव्या से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याइया, बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना, ते बोल करा गो जो प्रभ जियो दयाल होए, तो भगती लागो लपट रहो मन बासना गुर मिले त्यागो रहाओ। करो बेनती अत कनी यो जियो हमांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुट्टे दोख हर रागो, हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बा सिर जागो। सरण सुहागने आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड भागा मैला कदे ना हो वई न लागे दागा। प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए, सह समाना भीतरे छोड़िया न जाए रहाओ। जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतिया गान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम मोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा राखो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे रहाओ। हम अवगन करे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे। तुम देवो सबके दया तार, हम अकृत कनारे लाग परे तेरे दान स्यो नैचित खसमारे। तुय ते बाहर किश नहीं पव काट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष ना काहू दीजिए, प्रभ अपना त्याई है जित सेवे है सुख होए घना, मन सोई गई है कहिए काए प्यारे तुझ बिना। तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ, ज्यो तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा। नी तरिया तर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करो सोई भला मन लेता मुक्ता।
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤਾ, ਚਰਨ ਪਖਾਰੋ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਠਾਕਰ ਭਾਵੈ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸ੍ਰੀ ਉਪਰੇ, ਪਸੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਾਦ ਸਾਧ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰ ਅਭਾਗੇ, ਦੇਹ ਕੁਸੁੰਬਾ ਰੰਗਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਰਹਾਓ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬਣ ਕੀ, ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਵਰਤਨ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਮਾਟੀ ਸਿਉ ਮਾਟੀ ਰਲੀ, ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੀਐ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਾ ਜਾਹੇਂਗੇ, ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ। ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਵਾ, ਜਿਸ ਮਸਤ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੇ

आओ रूप तूप सौगंधता कापर पोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानुख भया खिन पंगन देहाद। ए अवसर ते चूकिया बहु जोन परमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद। सूख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद बिलावल महला पंजवा चरण पहे संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पायो ध्यान मैं गुर दसे पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठत सोबते हर हर हर चेत रहाओ। पंच चोर आगे पगे जब साध संगेत पूंजी सावत कणो लाभ ग्रे सोभा सेत। नेह चले आसन मिटी चिंत नाही डोलेत परम भुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिया केत नानक पाया साध संग हर हर अमरेत बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब प्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे उवा दिन बलिहारी तन मन अपनो जियारा फिर फिराओ वारी। रहाओ एत छिडाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी सगल रेन एहो मन पया बिनसी अपतारी। निंद चिंद पर दुखना ए खिन में जारी दया मया अर निकट पेख नाही दूरारी। तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तहनो नानक दर सारी बिलावल महला पंजवा। टहल करो तेरे दास की पग चारो बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयालो निस्बासर मन अंध हो तो चिरवत कृपाल। रहाओ जगते उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सियाणप कछ नहीं नाही कछ काल।

दयाल कृपा निधे सा सा सुमारै करनहार जो कर रहया साई वडियाई गुर पूरे उपदेसया सुख स्मर जाई चिंत अंदेसा गणत तज जन हुकम पछाता नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा महा तबते पई सांत परसत पाप नाठे अंध कूप में गलत थे काढ़े दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्बला लिखिया मिलिया अव्याए बहत संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिन से तिह लोक के पाए सुखथान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम। नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार। बिलावल महला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करण हर ना बूझई आप गने बेगाना। दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चित आए संतन कै आनंद हो नित हर गुण गाए रहाओ। ऊचे ते नीचा करै नीच खन में थापै कीमत कहीं ना जाइए ठाकर प्रतापै। पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समरथ प्रभ तेरी सरनाई हर दिन सरैण नानक जपै साध साध बल जाई। बिलावल महला पंजवा जल ढोवो एह सीस कर पग पख लावो बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ ते पावो देओ सुहनी साध कै बीजन टोलावो रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावो ओवा रस में सांत तृप्त होए बिख्या जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। ऊठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावो नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडपागी पाए। सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पय सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिलक प्रमोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ। औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै। हर हर जापिए अंतर लिवलाई किलवख उतरै सुध होए साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा पहते उपजै भगत प्रभ यंत्र होए सांत नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ता कै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी सुनिया उपदेश रहाओ। सिमरत सिमरत सिमरिया सो पुरख दातार मन ते कबो न विसरै सो पुरख अपार।

साथ रहाओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुर

गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सांत सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवनी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तलै तलै सब ऊपर, एह दृष्ट दृष्टाए अभमान खोए खोए खोए खोई हों। मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल अतुल अतुल नह तुलिए भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई। जिन पैज रखी सारे संसार रहाओ। कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन ना जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगौरी खावत है। तृण को मंदर साज सवारियो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो। चीत चितवाओ जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे सा दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तुह सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर है मेरी उल्ट तरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे।

बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कहो तुही पछान, जो जियन मैं होता, अरे मन काए कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पहे मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरा आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकूप मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेट काडे बा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिटे आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने को, काहू ना करते कशकीना। बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन शीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ।

प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि शरण पर्यो नानक दास जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभ नाम जरा मरा कहीं दुख न व्यापै अगै दरगै पूर्ण काम रहाओ। आप त्याग परिय नित सरणी गुर ते पाइय हो निदान जन मरण की कटिया फांसी साची दरगै का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो मन ते छूटे सगल गुमान कहो नानक ता की शरणाई जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत पर उपकार नित तिस रसना का मूल किश नाही रहाओ। कुल समूह उदरेखन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना आनंद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवां तीरो देख तुम्हारे रंगा तुही स्वामी अंतर जामी तुही वसै साध कै संगा रहाओ। खिन मैं थाप निवाजे ठाकर नीच कीट ते करह रजंगा कबहू ना बिसरै ही ये मोरे ते नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवां अचित पूजा जो गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्ब जिया का है प्रतपाल रहाओ। शरण समर्थ अकथ सुखदाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख अपने को तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी सर्बस संत जना तलमाल नानक जाचक दर्स प्रमांग संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन कौ त्रास अहे रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने मंतन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश एहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रहाओ। काढ़ कुठार खसम सिर काटिया खिन मैं होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया दिन दीना ताक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बिलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव आपे आवर्त स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी।

आप रहाओ कर कृपा हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा कृष्ण बुझी मन तन सहित राप अनाथ को नाथ शरण समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वच्छल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल महला पंजवा जिस ते उपजत सह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड पागी अंतर जामी सुगण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समर्थ निमाण्या को मान प्रम पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराधे नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बिलावल महला पंजवा दो वै थाव रखे गुरसूरे हल्त पल्त पार ब्रह्म सवारे कार्ज होए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुट्टे पै जमके कट कट एक रहया पर पूरे नानक सरन परयो दुख पंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कबो न होवो दृष्टया गोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण्या धार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार सुमारी सास सास प्रभ तुझै चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पहर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजवा तन तन योबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बिकार निस्पोर पया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता का

रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही हरे बस, हर नाम मामा संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पल माने, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावै त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गत मित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल ते अगर मैं जने आपो धारे, कर अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया नंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औध बिहावत अधिक मुहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।

तन तन कलातो सब देख अभमाना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ, कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल, गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला, गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्याई जाइऐ, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दरस होए, सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै, हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास, रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका, ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ अवमान, बिन नामै पाज रह निदान, सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ, गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो, साचै नाय वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर घर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेवियै अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां कर ग्यारवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपव ज्योति ज्योत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरो दस द्वार हैं जाके, अहनसो तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया, जम जागाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जाणै, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावै तजमान सखी मत अपने प्रीतम पावै तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड बिदी ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैण ना आवे ग्रेब बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोह नाथ प्रे नाथ जो जानो त्यो रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

से तरो पाव जल निध पारी राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बसना तजी न जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जोबन गया किशकिया नानिका एहो जियरा निर्मोल को कौडी लग मीका कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागरे अन लीपत जियो गयो ताना बाना कशुना सूजै हर हर रस लपटो हमारे कुल कौने राम कयो जबकि माला लई निपूते तब ते सुख ना पयो रहाओ सुनो जेठानी सुनो देरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए एहो मुंडिया क्यों नाम हो।

सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो। संत प्रहलाद की पै जन राखी हर नाक्ष नख बिदरियो। घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो। कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उदरियो। बिलावल को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ। तेरो जन होए सोए कत डोले तीन पवन परशाजा। हाथ पसार सकै को जन को बोल सकै ना अंदाजा। चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा। कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद निवाजा। बिलावल राख लिहो हमते बिगरी सील धर्म जब भगत ना कीनी। हाँ अभमान टेढ़ पगरी रहाओ। अमर जान संचिए काया ए मिथ्या काची गगरी। जिन्हें निवाय साज हम किए तिसे बिसार अवर लगरी। संदक तोहे साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी। कहे कबीर ए बिनती सुनियो मत कालो जमकी खबरी। बिलावल दर मानदे ठंडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल के वार रहाओ। तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस तुमार। मांगों का हे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार। जय देव नामा बिप सुदामा तिन कहो कृपा पई है अपार। कह कबीर।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनी उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बस है, सो जन क्यों डोले देव, मानो सब सुख नव नित ता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेख कुटल गांठ।

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख बिसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किश नहीं पव

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। एह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय प्रवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे दिन

ज्योत उपकरै दुख सुखासा, तिसका प्रवासा क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो, तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मैं सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लो हर रतना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। तिन के चरण मलो हर दसना, शब्द पछाण राम रस पावो। ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, ते जन की वडियाई हर या वधाई। ओ कटै ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुरना। जन नानक हर दान एक दीजै, नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पातशाह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थिर निह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान, जो हर महल पावै गुरबचनी, तिस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे, जो रंग कुसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यो चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत मिल पतत परवान, ओह सब ते उचा सब ते सूचा। जा कै हृदय वसया भगवान, जन नानक तिसके चरण पखालै। जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा। हर अंतर जामी सब तै वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करैयै। सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दूर रख लईयै। मेरे मन हर जप हर नित पढ़ैयै, हर बिन को मार जीवाल ना साकै। ता मेरे मन कायत कड़ैयै, रहाओ हर परपंच किया सब करतै। विच आपे अपनी जोत रहीयै, हर एक को बोले हर एक बुलाए। गुरपुरै हर एक दिखाइयै, हर अंतर नाले बाहर नाले। कहो तिस पासो मन क्या चोरैयै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी। ता मेरे मन सर्व सुख पईयै, जिस दै वस सब किछ सो सब दू वड्डा। सो मेरे मन सदा धियै, जन नानक सो हर नाल है तेरै। हर सदा धियै तू तुदले छडैयै, गोंड महला चौथा। हर दर्शन कहो मेरा मन बहुत तृप्तै, जो त्रिखावंत बिनीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै। मेरे मन अंतर की पीर, रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै। सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के। ले सतगुर की मत धीर, जन नानक की हर आस पुजावो। हर दर्शन सांत शरीर शकायक, राग गौंड महला पंजवा।
चौपदेह कर पहलाए को ओंकार, सदगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता, दृष्टो करता दृष्टो करता, उपत करता परलो करता, व्याप्त करता लिप्तो करता, भक्तो करता बूझत करता, आयावत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कब की न्याई, तू उर्ज रहो कुसुम भायले, भगतारे सास ले खैले तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़िया वायले, अपने रहन कौ ठौर ना पावे, काए पर कह जायले रहाओ। ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परयो कुटुंबायले, ज्यो पंखी एकत्र होए फिर बिशरै, तिर संगत हर हर त्यायले, जैसे मीन रसन साध।

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति वैष्णो रामदास मित नाही ब्रह्म अविनाश करण पलाह करै शिवदेव तिल नहीं बूजै अलख्या पेव प्रेम भगत जिस आपे दे जग में विरले के ही के मोहे निर्गुण गुण किशु नाहे सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे नानक दीन जाचै तेरी सेव कर कृपा दीजै गुरुदेव।

जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोहित संसार। नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण। नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद। नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप। नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण। बस्त्य गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राखै राखनहार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है। साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन में रुलता खाकू नाल। हैपी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो गुडा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसै ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परम्पर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कट कट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकत पाया, महा माया ता की है छाया। अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गत मित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार जाओ। संतन कै संग राम गुन गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तन ते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर।

सवारै अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे कास का पूला कहो कबीर तभी नर जागे जम का डंड मूड में लागे गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चौदस गगन रहाए ले आनंद मूल सदा परखोतम कट बिनसै गगन न जाए ले मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ पंच तत मिल काया कीनी तत कहां ते कीन रे कर्म बद तुम जियो कहता हो कर मैं किन जियो दीन रे हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे कहे कबीर रा राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे राग गोंड।

इस मरते कहो जे कहो रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुरप्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागद पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सर चढ़ बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई, आवत जात नाग सर।

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अस्मेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड। नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यों बिखई हेरै परनारी कौडा डारते हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महा माई की पूजा करै, नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखा था, रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना, हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेवया, जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता।

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करै निंद बोजू नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली।

कोई पढ़ता सहसा करता, कोई कड़े पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंधकूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबर भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कहिया। दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कह आस

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिय जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा, राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने। पत झोली मंगण कै ताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरश बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखां ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मां शिंदरा।

नानक बोलै वसत पंच करे नहीं डोलै, ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावै, अहनिस सुन समाज समावै। रहाओ भिखिया पाए भगत पै चलै, होवै सो तृप्त संतोखिया मुलै। ध्यान रूप होए आसन पावै, सच नाम ताड़ी चित लावै। नानक बोलै अमृत बाणी, सुन माशिंद्रा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए, निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संध मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। आराम कली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध भेटन को आए, निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया, देह भगत पूर्ण अविनाशी। हाँ तुझको बलिहारिया। रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ, साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरत्र लाइय एत। तन कर तुल्हा लंगे जेत, अंतर पाहित सह तू रख। एनस दीवा बलै अथक।

राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रहन रैन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

जीवन दाते हर संत पगी ले पावै। हौ काटो काट बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवै।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चाल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बांछ पिस्त, कोई सुरगिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरना जोग, नह बिन सैब नासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली महला पंजवां, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखै हो बीचार। राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारै ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद ना लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवार रे रहाओ। प्रथमे वसिया सत का खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। द्वितीया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक ऐ सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक ऐ मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इउं किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगै टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सूड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

राज रंग रूप सब कूर नाम बिना होए जासी तूर परम पूले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं देह बरदानी सागत इवही करत बयानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पंच शब्द तह पूर्ण नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद तेल करे संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निरजोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावै तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ ऊहा सिमरै केवल नाम बिरले पावै ओ विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निश्चल आसन बेसुमार दिग ना डोलै कतहू ना तावै गुर प्रसाद को।

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गहो।

तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरै तब यो सेवक सेवा करै। मुख बेरावै अंत ठगावै एक ठौर ओ कई ना समावै। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रहै इस संग राचै सो कछु ना लहै। ऐसे त्याग सत्संगत करै वडभागी नानक हो तरै। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर्ण रहा प्रभ एक रत्न अमोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस बेद सुने कह डोरा। कोट प्रकाश न दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचै जिसने बुझावे सो कित बिद बुझै। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास हे बित। काटी बंध हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

कट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली महला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगह पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुरमत बिन सै

मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार। राम कली महला पंजवां, रतन जिवेहर नाम सत संतोख ज्ञान। सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार, खात खर्च कष्ट तोट न आवै, अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन। भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप देवाया, साध संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। रामकली महला पंजवां, मेहमा ना जाने बेद, ब्रह्मे नहीं जाने भेद। अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ। संकरा नहीं जाने भेव, खोज तहारे देव। देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपना रंग करता केल, आप बिछोरे आपे मेल। एक पर में एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख है आखी। नहीं लेप तिस्पुन ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप। रामकली महला पंजवा, किशु काजना कियो जान। सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म। किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे। तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूलै चूकै प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखै ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुण पास। नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। रामकली महला पंजवां, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल। सगल अराधय जंत, मिलिए प्रभ गुर मिलमंत। जियन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी। घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ। ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद। तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार। सुमत सार।

आनंद कर संत हर जप शाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर अस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतरे पार देवन हार दा तार अंतना पारा वार जा कै कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए रामकली महला पंजवां दुलभ देह सवार जाए ना दरगह हार हलत पलत तुद होए वड्याई अंत की बेला ले छडाई राम के गुण गाओ हालत पलत होहे दो है सुवेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसह सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तमे हो कर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरण तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरे।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिस को सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत पारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै आ मिटाए मलीजै अंदन त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गोसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत करमान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे ना व्यापै तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजे, जब गोबिंद पढ़दे सब काजे, गुर परमेसर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद, गुर चरणी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा। राम कली महला पंजवा, किस पर वासै बिचरै भवन, मूड़ मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नी जानै, पंच बटवारे से मीत कर मानै, सो कर सेव जित उदरै मीत, गुण गोविंद रविया दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ। जन्म बिहानो अहंकार अरवाद, तृप्त न आवै बिखिया साध, परमत पर

सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठगदा ठगै, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। राम कली महला पंजवां, जो तिस पावे सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़े नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महला पंजवां, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाई है साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवां, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल मैं होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक आरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरे सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवां, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन।

हाँ मैं जाए शब्द कर लही रहाओ गण गण जोत कुकंडी कीनी पढ़े सुना मैं तत्न चीनी सब सही उपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदौ ना सगली शार नावै तोवै पूजै सैला बिन हर रातो मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सार्थ मुक्त प्राण जप हर कृतार्थ वाचै वादना वेद विचार है आप डुबै क्यों पितरा तार है घट घट ब्रह्म चीन जन को ए सतगुर मिले ता सो जी होए गणत गणी है।

मनसा मार मन सहि समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती, नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ। हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्ताए ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नामे होर पूजना होवी, परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत में तो तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सतसंगत में लाई। गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिवलाई। पह पंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। सब किश आपे आप वरते, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा। हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैले उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर, करता आप सवारी रहाओ। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करे फिर अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक आंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते, सहजे हों मैं मारी। पै बिन भगत ना होई कभी, पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी। आपे आप कराए करता, आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया, हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सालाही, विचों आप निवारी। नाम पदार्थ गुरते पाया, खुट सचे भंडारी। अपनिया भगता नो आपे तुठा, अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका, आखण बिख विचारी। शब्द लगे से जन निस्तरे, पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे, बूझे को विचारी। जो तुर लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सवा।

अवर न कर ना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर तंदै लाई, तिसै श्री वो ता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए, अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे, तिसनो तिल ना तुमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पुलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरे लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। एक ना नामो आप पुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर न कोई राजा, करत पावस बरत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो, जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रया विस्माद, मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। किन्ही किया परवृत पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंगम सादे, मोहे दीन हर हर यारा दे। तेरा भरोसा प्यारे, आना जाना वेसा रहाओ, किन्ही गृह तज वनखंड पाया, किन्ही मोन अवधूत सदाया, कोई कहतो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती। किन्ही कहया हौ तीर्थवासी, कोई अन्न तज पया उदासी, किन्ही पवन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कहया मैं कुलै वड्याई, किन्ही कहया बा बहु पाई, कोई कह मैं तनै पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा। किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर त्याया। किन्ही सिद्ध बहु चेट कलाए, किन्ही पेख बहु थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करे आचार सुकरणी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामे ओ मन ना प्रबोदे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जंतु करया, माटी काले देहुरा करया, उक्त जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्भ मैं जंतु राखिया, राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहाओ। जिन दिए तुद बाब महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना। भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जनी ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको अंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरण आई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन यान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाचै लाए तराई। अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो कल अंधकार दीपाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप्त त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। रामकली महला तीजा रामकली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली कृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्स समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो। आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जो बन सोत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार होता।

मुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटा जिस दिया हे वडे आईया। कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपागै, कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुजन कहो से नाम हर कै लागे, कहे नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया, एस ना होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मुह त्रुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक हो आनंद है आनंद गुरते जानिया, बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिरै दै दिस एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावै, कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै, आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईऐ, तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाईऐ, हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी, ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तने कीती जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तसै विटो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई है, ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले,

ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखाओ विण सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिरबाणी। जिन कहो नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी, पीवहो अमृतो सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करै रसना कहया कछु ना जानी। चित जिनका हिर लया माया बोलन पए रवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव सकत आपो पाए कह करता। आपे हुकुम वरताए हुकुम वरताए, आप वेखे गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सो लिव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए। सिमर तो शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार ना जानी, ततै सार ना जानी गुरु बाजो ततै सार ना जानी। तिही गुणी संसार परम सुता, सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते सेजन जागे, जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंदन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है ए वरदाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे ओसनो केहो पोहे ना सकी। जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जेही करता खेल रचाया। जात पाणा ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै, पाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटो रहे लोक मिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सोपीए विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होवा वनजारा, ए रसना तू अनरस राच रही। तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए। कहे नानक होर अनरस विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे, गुरचरण लागे दिन सुपागे अपना पिर जापे।
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖ ਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਏ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੋ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮ ਨਿਧੋ ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੋ ਗਾਵਹੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹੇ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵਹੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵਹੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछल ते हलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवर ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिर नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंद बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाव न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कह निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राण आधारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दा तारा मेरे कृपाला दान दा तारा प्रापारा कट कट अंतर सोहने आ एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहने आ जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बिचारा कहो नानक जो प्रभ को पाणा तिस ही को प्रभ प्यारा मानो प्रभ मानो मेरे प्रभ का मानो जानो प्रभ जानो स्वामी सुगुण सुजानो
सूड़ सुजाना सत परदाना अमृत हर का नामा चाख्या गाने सारंग पाने जिनके पाग मथाना तिन ही पाया तने ते आया सगलत सह का मानो कहो नानक थिर तख्त निवासी सचित सह दी बाणो मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहेलड़ा प्रभ सोहेलड़ा अनहद तुनिए सोहेलड़ा अनहद वाजे सब दया गाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मर ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुनिया कहो नानक कर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याय मना खिन्ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उरतारी है उरतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसै दुख पव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निधान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा किल विखहरना नाम पुने चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोय न जान नहीं देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं जी जंत सब तो इतिहावै पुरख पत परमेसरा सर्व जाच के एक दाता करना मैं जगदीसरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी मान नहीं बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जलने बुझाई सांत आई मिले चिरी विशुन्या आनंद हरख सह साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्दा नाहद नित उठ गई है संतन कै केलविक सब दुख बिनासनो हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजे अम्यो पीजे रहन दिन सहारा दिय जोग दाना नेक किरिया लग चरण कमल ऐसा दिए पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याय स्वामी न रहरै सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावै गुण तेरे राम आनंद मंगल गुरचरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा प्रम्पो पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दा मोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थी वा बिनवंत नानक प्रभ मया की जय नाम तेरा जब जीवा राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम आठ पहरे अपना प्रभ सिमरै एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे पव जल रहे अवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुनियास पूरी मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख विसूरिया राम कली महला पंजवा शंत सलोक चरण कमल सरनागति आनंद मंगल गुणगाम नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम शंत प्रभ विपत निवारणो तिस्बने अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरी है जल थल मैयल सोए जियो
ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਰ ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨਸ ਭਾਗੇ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ, ਕਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਦਿਨਸ ਰੈਣੀ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖੈ ਦਾਤੇ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੰਤਨ ਹੋਏ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ, ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ, ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ। ਸ਼ੰਤ ਪੈ ਸੰਕਟ ਕਾਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਆਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਅਚਿਤ ਪੁਰਖ ਏਕੋ, ਤਿਸੈ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਕਰ ਚਰਨ ਮਸਤਕ ਮਿਲ ਲੀਨੇ, ਸਦਾ ਅੰਦਨ ਜਾਗਾ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਥਾਨ ਤਿਸਕਾ, ਤਨ ਜੋਮਨ ਤਨ ਮਾਲ ਜੀਓ, ਸਦ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਖਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੈ ਨਿਦਾਨ। ਸ਼ੰਤ ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਕੋ, ਅੰਚਲ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗ ਜੀਓ, ਭਜ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਇਆਲ ਦੇਵ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਜੀਓ, ਇਕ ਓਟ ਕੀ ਜੈ ਜੀਓ ਦੀ ਜੈ, ਆਸ ਇਕ ਤਰਣੀ ਧਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਭ ਤਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੇਕਾਰ ਛੂਟੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ, ਥਿਰ ਜਾਂ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਧਰਮ ਅਰਥ

महा गर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्म बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सत बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो सलोक आस प्यासी मैं फिराओ कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणांगति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडंबरो असू कत के हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने।

ले आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्र पवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो सलोक संत सहाय जी के पव जल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर शंत चरण विराजत सब उपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीश्वर गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि कौवा देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओवंकार एक ओवंकार सतगुर प्रसाद ओवंकार ब्रह्मा उत्पत ओवंकार किया जिन चित ओवंकार सैल जुग पए ओवंकार वेद निर्मय ओवंकार शब्द उदरे ओवंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तद्दै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाणै कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुररस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणे इउ कर महल सियापै प्रभ नेड़े हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि अस्वरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम जो त्यो जाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारन हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवे सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथे सुने सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मान मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवह तार रण में लूजे मनुआ मार राधनंत रह रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सोत सी जेहा अत निर्मायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना की जय अमृत पी जय रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोय चेता एक तही सुभोय चित वसै राचे हर नाए मुक्त भया पत स्यों कर जाए छीजे देह खुले एक गंड छे अन देखो जगहंड धूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया छूछी जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना छीजे जोबन जरुआ सिरकाल काया छीजे पही सिवाल जापै आप प्रभु तेह लोए जुग जुग दाता अवर ना कोए ज्यो पावे त्यों राखे राख जस जाचो देवे पत साख जागत जागरहा तुद पावा जा तू मेले ता तुझे समावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिलिए बीसा कीस चख बोलन क्या जग स्यों वाद चूर मरे देखे प्रमाद जन्म मुए नहीं जीवन आसा आए चले पहे आस निरासा।

उत्तर दी जय। साच कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसन दी जय। जैसे जल मैं कमल निरालम, मुर्गाई नैसाणे। सुरत शब्द पव सागर तरिय, नानक नाम वखाणे। रह एकांत को मन वसिया, आसा माहे निरासो। अगमा गोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारो। रोस ना की जय उत्तर दी जय, क्यों पाई है गुरुद्वारो। एहो मन चलताओ सच घर बैसै, नानक नाम यादारो। आपे मेल मिलाए करता, लागे सच प्यारो। हाटी बाटी रह निराले, रूख बिरख उद्याने। कंद मूल आहारो खाइय, औदू बोले ज्ञाने। तीर्थ नाइय सुख फल पाइय, मैल न लागे काई। गोरख पूत लोहारी पा बोले, जोग जुगत बिदसाई। हाटी बाटी नींद न आवे, पर कर चित न डोलाई। बिना वै मन टेक न टिकई, नानक भूख न जाई। हाट पटन कर गुरु दिखाया, सहजे सच वा पारो। खंडित निंद्रा अल्प आहारं, नानक तत बिचारो। दर्शन पेख करो जोगिंद्रा, मुंद्रा चोली खिंथा। बारह अंतर एक सरेवो, खड़ दर्शन एक पंथा। इन बिद मन समझाइय पुरखा, बाहुड़ चोट ना खाइय। नानक बोले गुरमुख बूझै, जोग जुगत इव पाइय। अंतर शब्द निरंतर मुंद्रा, हो मैं ममता दूर करी। काम क्रोध अहंकार निवार, गुर कै शब्द सो समझ परी। खिंथा चोली भरपुर रहया, नानक।

तुमाई। क्यों तत्तै अवगतै पावै, गुरमुख लगै प्यारो, आपे सुरता आपे करता, कहो नानक बिचारो। हुक्मे आवै हुक्मे जावै, हुक्मे रहै समाई, पूरे गुरते साच कमावै, गत मित सबदे पाई। आद कौ बिस्माद विचार कथियाले, सुन निरंतर वास लिया, अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारियाले, कटकट साचा सर्व जिया। गुरबचनी अवगत समाई है, तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी, सेवै सिखसो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै, जी जुगत सच जाणै सोई, आप मेट निराल मोहवै, अंतर साच जोगी कहियै सोई। अवगतो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचै परम पद पाईऐ, साचै शब्द समाय लिया। एक कहो सच एका जाणै, हम मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाणै, अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरै ता सबके सूजै, अंतर जाणै सर्वदया, नानक ता को मिलै वडाई, आप पछाणै सर्व जिया।

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लाया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पाया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख तरती साचै साजी तिसमें ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम

अज्ञान का भ्रम कटी है ज्ञान प्राप्त होए, नानक एको नदरी आया जै देखा तै सोए पौड़ी। सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, सब किश आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियां कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई। आपे वेखे सुने आप गुर शब्द ते आई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।

सो सहो नजर करे, आपे पीसे आपे कसे आपे ही लाए ले। एहो परम प्याला खसम का जय पावे तै दे पौड़ी, वेकी सृष्टि उपाइयन सब हुक्म आवे जाए समाही। आपे वेख विकसदा दूजा को नाही, जो पावे त्यों रख तू गुरशब्द बुझाही। सबना तेरा जोर है ज्यो पावे त्वे चलाही, तुद जेवड मैं नाहे को किस आख सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, भरम भुलाई सब जग फिरी, फावी होई पाल। सो सहो सांतना देवई क्या चलै तिस नाल, गुर प्रसादी हर त्याई है अंतर रखिए उर तार। नानक घर बैठिया सब पाया जा कृपा कीती करतार। महला तीजा, तंदा तावत दिन गया रैन गवाई सोए, कूड़ बोल बिख खाया मन मुख चलिया रोए। सिरे उपर जम डंड है दूजे पाए पत खोए, हर नाम कदे ना चेत्यो फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन मसे जम डंड ना लागे कोए, नानक से जे मिल रहे कर्म प्राप्त होए पौड़ी। एक अपनी सिफती लाया नो दे सतगुर मती, एक नानो नाओ बख्शियो नो अस्त्र हर सती। पौन पानी बै संतरो हुक्म करे भगती, ए नानो पव अगला पूरी बनत बनती। सब एको हुक्म वरतदा मन्ने सुख पाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सो सह जो मर जीवा होए। महला तीजा, क्यों कर एहो मन मारी है क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मान नहीं हम मैं छड़े ना कोए। गुर प्रसादी हम मैं छुटे जीवन मुक्त सो होए, नानक जिसनो बक्से तिस मिले तिस बिघन ना लागे कोए। महला तीजा, जीवत मरना सब को कह जीवन मुक्त क्यों होए, पह का संजम जे करे दारू पाओ लाए। आन दिन गुण गावे सुख सहजे, बिख पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाई है जा को नजर करे पौड़ी। दूजा पाओ रिचाए उन त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय अन हुक्म कमावन कारा। पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझे बिचारा, सब किस तेरा खेल है सच सृजनहारा। जिस पावे तिस बख्श लहै सच शब्द समाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावे माया नो फिरे तपा सदावे। परमे पूला सब तीर्थ गहै ओह तपा कैसे परम गत लहै, गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोख अंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे हो तप काले सतगुर नो मिले शब्द संभाले। सतगुर की सेवा एहो तप परवान, नानक सो तपा दरगे पावे मान पौड़ी। रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कट चानना अनेर बिनासन। हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वाण, त्रिण सब किश आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण। सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई।

अभ्यागत है ना आखियां ना जे पर कर भोजन करे ना उदरे कारण अपने बहले पे करे ना। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे ना पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे ना। पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ। सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रहण आयर मह सब किश है, करमी पल्लै पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म विनाश, रसना हर रसना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नजर करे प्रभ सच्चा, ता होवे दासन दास, ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़े पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरता, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजिया नो, पाप पुन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला।

नाम जपे नामो वारादे तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाही किस आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथों हो मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसै प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुर भावै सो मन लैन सही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लाया न मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरखै खटै पाओ पावै आवो पावै जाओ। शास्त्र वेद न मान कोए आपो आपै पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कन हृदय समाहे। लोक मुहावै चाड़ी खाहे चौका देकै सुचा होए। ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गिरही जटा बिभूत। आगै पाछै रोवै पूत जोग न पाया जुगत गवाई। कित कारण सरशाई पाई। नानक कल का एहो प्रवान आपे आखण आपे जान। महला पहला हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पड़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई। नाता तोता थाए न पाई मुसलमान करे वड्याई। विण गुर पीरै को थाए न पाई। राहो दसाए उथै को जाए करनी बाजाओ पिस ना पाए। जोगी कह कर जुगत दसाई तित कारण कर मुंद्रा पाई। मुंद्रा पाए फिर संसार जिथै किथै सृजनहार। जेते जीते ते वाटाऊ चीरी आई ढिल ना काऊ। एथे जाने सो जाए सजाण होर फकड़ हिंदू मुसलमान। सबना का दर लेखा होए करनी बाजो तरह न कोए। सचो सच वखाणै कोए नानक अगे पुछ न होए। पौड़ी हर का मंदिर आखिया काया कोटगढ़। अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदिर शरीर अत सोहना हर हर नाम दिड़। मन मुखे आप खोआयन माया मोह नित कड़। सबना साहब एक है पूरे भाग पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਤ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤ ਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰੈ, ਨਾ ਸਤ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ, ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰੈ, ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ, ਆਪਤ ਛਾਵੈ ਦੁਖ ਸਹੈ, ਨਾ ਸਤ ਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ, ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਘਾਉ ਚਰੈ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਸਿੱਧ ਦੇਵੈ ਜੇ ਸੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਤਸਿਆਏ ਮਿਲੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਜਿਸ ਘਟ ਪੀਤਰ ਸਬਦ ਰਵੈ, ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹਉ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਸੈ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੈ, ਜਿਸੈ ਦਿਖਾਲਾ ਵਟ

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाव जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवै सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माणै सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछै डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसन आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई। आवन जान न सुजई भीड़ी गली फही। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया अहंकार गवापै। सब किश हर का खेल है गुरमुख किसै बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परस राम रोवै घर आया अजय सो रोवै पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिलै सजाए रोवै राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया रोवै दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए रोवै। पांडव पए मजूर जिनकै स्वामी रहत है दूर। रोवै जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया। रोवै शेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागै पीड़। रोवै राजे कन पढ़ाए कर कर मांगै भिखिया जाए। रोवै किरपन संचय धन जाए। पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जिन जाए औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै गुण महे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है आपे दे वडियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रतना परखण जाए। रतना सार ना जानी आवै आप लखाए। महला दूजा रतना केरी गुथली रतनी खोली आए। वखर तैवन जा रहा दुहां रही समाए। जिन गुण पल्लै नानका माणक बन जैसे। रतना सार न जानी अंधे वत्तै लोए। पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवै गुप्त रखी जय। बजर कपाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे धुन वज दे
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ, ਤਿਤ ਘਟ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜੈ, ਸਭ ਮੈਂ

कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार, गर्भ ना की जय नानका मत्सर आवे पार। पौड़ी सो सतसंगत शब्द मिले, जो गुरमुख चले सच ते आयन से सचे, जनहार खर्च तन पल्ले। भगत सोहन गुण गावंदे गुरमतिया चले, रतन विचार मन वसिया गुर कै शब्द भले। आपे मिल बिलाईंदा आपे दे वड़ियाई, वाह वाह सचे पातशाह तू सची नाई। सलोक महला तीजा, आसा अंदर सब को कोई निराशा होए, नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए। महला तीजा, ना किश आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे ए बपड़ी जा पुलाए सोए। पौड़ी त्रिग जीवन संसार, सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दातार, नि चले हो तन साध सास्या राधे निर्मल सोए जानो, अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहया सरबत नानक बल जाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सची नाई। सलोक महला पहला, सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै एवै पाणा सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना। बगला काग न रही सरवर जे होवै अत सियाणा, ओना रिजक न पयो उथै ओना होरो खाना। सच कमाणै सचो पाईऐ कूड़ै कूड़ा माणा, नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पै परवाणा। महला पहला, साहिब मेरा उजला जे को चित करे, नानक सोई सेवियै सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवियै जित सेवै दुख जाए, अवगुण वंजन गुण रवै मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लाइयन, आपे ही उपदेशदा गुरमुख पति आईयन। एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन, जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे नाए लाइयन। नानक नाम ती आई है सच्ची वड़े आई।

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएं दा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपूरै देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवां सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन।

कोई ऐसा सज्जन लोड लाहो जो मिले प्रीतम मोहे, गुरपुरै मेलाया जत देखा तत सोए, जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी। देवन हार दा तार कित मुख सालाही है, जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है, कोई ना किसी वस सबना एक तार, पाले बालक वांग देके आप कर, करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है, सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा, भीड़ो मोकलाई की अन सब रखे कुटुंबै नाल, कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल, दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख पौड़ी। सो ऐसा दातार मनो ना विसरै, कड़ी ना मोहत चसा तिस बिनु ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै। सलोक महला पंजवा, तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए, तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जपदे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या, तिन सद बलिहारै जाओ, तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सद

जन नानक पाया अगम रूप अंत ना काहूं जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन सो संजोगड़ा जित डिठा गुरदरसार मन किया इच्छा पूरियां हर पाया अगमा पार हमें टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेवहार उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियां न सौपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियां न जिसनो लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुरे आए तिन प्रभ जानिया हम बलिहारी तेनों जे खसम पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एक को मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कन्न समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जग हथ हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरियां पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही पोगे पोग महला पंजवा मनमुखा केरी दोस्ती माया कासन बंद।

व्यापया दुर्मत कबुद्ध कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा। सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा। नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की। जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है। सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगै सिजई। जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई। जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई। जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत लई। श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जपी।

जे सिमरन करै तू केल, दीपक बान धरियो बिनतेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेकाडी ले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राखो तार, गुर प्रसादी उतरै पार। जे सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू आंदन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए, सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइयै संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत। राम कली कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्त गुर अनल बुझाया। जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत ओन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ। उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग, बेदी अले चक्र पयंगा, पेटी अले राय नसंगा, चूकी अले मोह मयासा, सस कीनो सूर गिरासा। जब कुंभक भरपुर लीना, तह बाजे अनहद बीणा, बगतै बग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग। चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर धरिया पसार। रहाओ हीरा देख, हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजना लेख। दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत हौरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई। रहाओ नींब पयो आंब, आंब पयो नींबा, केला पाका चार, नालियेर फल से बरपाका, मूर्ख मुग्ध गवार। हर पयो खांड, रेत में बिखरियो, हस्ती चुन्यो ना जाई, कह कमीर कुल जात पात ताज, चीटी होए चुन खाई। बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छड़ी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले कहत नाम दे उसनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद वेद मजाओ गो बैरागी राम गावो गो शब्दा तीता नहदराता या कुल कहकर जाओ गो रहाओ एड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो तीर्थ देखना जल मैं पैसो जी जंत ना सतावो गो आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए कठी पीतर नाओ गो पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो ना कहावो गो नामा कह चित हर स्यों राता सुन समाध

माय ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया।

पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां तेरे आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। आराम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अगन दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जाओ गोदावर जाइए, कुंभ जाओ केदार नाइए, गोमती सहस गऊ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करे, तन जाओ हिवाले गारे, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्म

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबदा नाहद बाणी, तह चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाद पलोवै। बीज मंत्र लै हिरदय रह, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया पाख, पांचों इंद्री बस कर रख। गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंदै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगन्नाथ्यो गोष्ट करै। चौमुख दीवा जो द्वार, पलुवंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामै गुहै। मस्तक पद्म द्वालै मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

मेरे मानो जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ, हर हर नाम जप।

राम जप जन रामे नाम रले, राम नाम जपयो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगमया गोचर स्वामी, जन जप मिलो सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। परखोत्तम हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले, उनवे कहन कहन कहन हर गर जय, मन बिकसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे, जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखे के, बहु बार बार निमखे, अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप करखे, जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरणखे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के भूल चूक, हम अब आए प्रभ शरणगे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम रखो वड पापगे। तुमरी संगत हर को ना उधरियो, प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शिपा दुष्टारियो, प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गावे स्वामी, हाँ बल बल बल तिनगे। पवन पवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवे तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे, जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदो, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रभ वडने। नट महला चौथा, मेरे मानो कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुरु हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम गोचर स्वामी, सब त्यावे हर रुणने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने। इहो पर पंच किया प्रभ स्वामी, सब जग जीवन जुगने, ज्यो सलल सलल उठे बो लहरी, मिल सलल सलल समणे, जो प्रभ किया सो तुम ही जाना, हम न जाही हर गहने। हम बारक कौर दुस्त धारो, हम करे प्रभु सिमरणे। तुम जल निधार मान सरोवर, जो सेवै सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बांछ, हर देवो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा, पड़ताल एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल, सब दाल दुपाई दुख दा।

हर हो नजर निहाल रहाओ हर का गृह रैप सवार्यो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हरे आवते की खबर गुर पाई मन तनो आनंदो आनंद पहे हरे आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पहे गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मेर संत संगत सुभवंती सुने कथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीर्त कलयुग विच यूतम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हौ कुरबानंती हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सा पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिसको हौ बल बल बाल सो हरजन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो नेह कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट है दूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद राम हाउ क्या जाना क्या पावै मन प्यास बहुत दर्शावै रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवै कृपा करो जिस पुरख विधाते सो सदा सदा तू त्यावै कवन योग कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी री जावै सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै साई मत साई बुद्ध सियाणप जित निमख ना प्रभ बिसरावै संत संग लगे हो सुख पायो हर गुण सद ही गावै देखियो अचरज महामंगल रूप किश्यान नहीं दिष्टावै कहो नानक मोर्चा गुर लाहयो तै गर्भ जोन कह आवै नट नारायण महला पंजवा दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद ओलाहनो मैं काहू ना दियो मन मीठ तुहारो कियो रहाओ आग्या मान जान सुख पाया सुन सुन नाम तुहारो जियो इहां उहां हर तुम ही एहो गुरते मंत्र दृढ़ियो जब ते जान पाईए बाता तब कुशल खेम सब थियो सा संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी तीर जमकी त्रास मिटी सुख पाया निकसी हो मैं पीर रहाओ तप्त बुजानी अमृत बानी त्रिपते ज्यों बारक खीर मात पिता साजन संत मेरा संत सहाई वीर खुले परम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर बिस्म पए नानक जस गावत ठाकर गुनी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपै आप उधारियो आठ पहरो जन कै संग बसियो मनते नहि बिसारियो रहाओ बरन चिहन नाही किछ पेखियो दास का कुल ना बिचारियो कर कृपा नाम हर दियो सह सुभाए सवारियो महाबिखम अगन का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिकसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहयो कोट प्राद मिटैखन पीतर ताका दुख ना रहयो रहाओ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहयो सगल त्याग एक लिव लागी
हर हर चरण गहयो, कहत मुक्त सुनते निस्तारे, जो जो शरण पयो। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक अंध पयो। नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी। रहाओ अंचला गहायो जने अपने को, मन भी दो प्रेम की खोरी। जस गावत भगत रस उपजयो, माया की जाली तोरी। पूर्ण पूर रहे कृपा निधो, आन ना पेखो होरी। नानक मेल लियो दास।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सरण हर प्रभ आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतारो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक।

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर मनुख फिरै से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू देहे।

मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए, सदा हर चरणी लाग रहा, एक मन एक है पाए रहाओ। ना मैं जात ना पात है, ना मैं थे हो ना थाओ, शब्द भेद भ्रम कटिया, गुरु नाम दी आसन जाए। एहो मन लालच करदा फिरै, लालच लागा जाए, धंधे कूड़ वे आपिया, जंपर चोटा खाए। नानक सब कुछ आपे आप है, दूजा नाही कोए, भगत खजाना बख्सियोन, गुरमुखा सुखोए। मारू महला तीजा, सच रते से टोल लहो, से वरले संसार, तिन मिलिया मुख उजला, जप नाम मुरार। बाबा साचा साहेब हृदय समाल, सतगुर अपना पुछ देख, लेहो वखर पाल रहाओ। एक सच्चा सब सेम दी, तुर भाग मिलावा होए, गुरमुख मिले से ना विछड़ै, पावै सच सोए। एक भगती सार न जाननी, मनमुख भरम भुलाए, उन्हां विच आप वरतदा, करना किछू ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई, खले कीचै अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसै, तां सुन करे साबास। मारू महला तीजा, मारू ते शीतल करे, मनूरो कंचन होए, सो साचा साला ही है, तिस जे वडियावर ना कोए। मेरे मन आंदन त्याए हर नाओ, सतगुर कै बचन आराध तू, आंदन गुण गाओ रहाओ। गुरमुख एको जानिया, जा सतगुर दे बुझाए, सो सतगुर साला ही है, जिदू एह सोजी पाए। सतगुर छोड़ दूजे लगे, क्या करने अगे जाए, जंपर बदे मारिए, बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभ वे प्रवाहो है, ना तिस तिल ना तमाए, नानक ते सरनाई भज पाओ, आपे बख्श मिलाए। मारू महला चौथा, कर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी, हर हर सरन परे, दाल द पांज सुदामे मिलियो, भगती पाए तरे। भगत वचल हर नाम किरतार्थ, गुरमुख कृपा करे, मेरे मन नाम जपत उदरे, ध्रुव प्रहलाद बिदरदासी सुत, गुरमुख नाम तरे रहाओ। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उदरे, नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन, सब दोह गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे, सब किल बिख पाप टरे, जो जो नाम जपै अपराधी, सब तिनके दुख पर हरे। बेसवा रवत अजामल उदरयो, मुख बोले नारायण नर हरे, नाम जपत उग्रसैन गत पाई, तोड़ बंधन मुक्त करे। जन कौ आप अनुग्रह किया, हर अंगीकार करे, सेवक पैज रखे मेरा गोविंद, सरन परे उदरे। जन नानक हर कृपा तारी, उर धरयो नाम हरे, मारू महला चौथा, सिद्ध समाध जपयो लिवलाई, साधक मुन जपया, जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्राद करव्या। सरन परे जपयो ते पाए, गुरमुख पार पया, मेरे मन नाम जप तरिया। तन्ना जट बालमीक बटवारा, गुरमुख पार पया रहाओ। सुरनर गण गंधर्वे जपियो, रिख बपरै हर गाया, शंकर ब्रह्म देवी जपियो, मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिन्ना मन पीना, ते गुरमुख पार पया, कोट कोट ते तीस ते आयो, हर जपते अंत ना पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया, मुख पंडित हर गाया, नाम रसाल जिन्ना मन वसिया, ते गुरमुख पार पया। अंत तरंगी नाम जिन जपया, मैं गणत ना कर सकया, गोविंद कृपा करे थाए पाए, जो हर प्रभ मन पाया। गुरतार कृपा हर नाम दृढ़ायो, जन नानक नाम लया।

मेरा मंत्र नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मिलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी, वड़भागी गुरसेवया हर पाया सुगड़ सुजानी, मनमुख भाग विहूणिया तिन दुखी रहन विहानी, हम जाचक दीन प्रभ तेरे आ, मुख दी जय अमृत बाणी, सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगड़ सुजानी, जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी, मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया, वड़भागी हर मन राख, मिल संगत सरदाई उपजै गुरसबदी हर रस चाख, सब मंतन हरिया।

अपने चलता। जिस हर राखै तिस कौन मारै, जिस करता आप छिड़ाई जियो। हवन दे नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छिड़ाई जियो। मारू महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। डर पै तरत आकाश नखियतरा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा। एका निरपौ बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ, देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया। लख चौरासी मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राज

कवन चेहना सुन ऊपर शोहयो मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती एक मुद्दत चलते खबर ना पायो। रहाओ सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमा ने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा इन मैं कमन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हों मैं पाई, जन्म मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई। बरन चेहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा, पणत नानक जब खेल उजारै तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवा मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे, वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवयो अपना चलते राख्यो चीत। रहाओ जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो तिस्ते मुख नहीं मोरेओ, सहजा नंद रखियो गृह पीतर उठ वाहूं कौ दौरेओ। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो घर खनी जानेओ, जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथा ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सवरे हल्त पलाता, तन सेवक सफल ओह आया जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई। रहाओ काम क्रोध लोभ निवारे निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर कतै ना पयो दुराई। सुख शीतल सरदा सा पूरी होए संत सहाई, पावन पतत किए खिन पीतर मैं मां कथन ना जाई। निरपौ पय सगल पै खोए गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावै ठाकर का रहन दिन सलिवलाई। मारू महला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ता कौ ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ कौ क्यों ना समार सरे, बैरी संग रंग रस रचिया तिस्यों जिया राजार सरे। रहाओ जा कै ना

गुरमंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन ना पाए। हरे नार इन बिद पार पराए, त्याय हर जी होए मृतक, त्याग दूजा पाओ। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा, बाहर टूंडन ते छूट परे, गुर घर ही माए दिखाया था। अनपव अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ना कथू जाया था। मानक पायो रे पायो, हर पूरा पाया था, मोलिया मोल ना पाया जाई, कर कृपा गुरु देवाया था। रहाओ आदिष्टा गोचर पार ब्रह्म, मेरा साधु कथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वजयो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मंत्रशना बूझी, अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुरसेवे, अगड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम गुर खोया, ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा, जिसे साज निवाजया, तिसे स्यो रुच नाहे। आन रुती आन बोई है, फल ना फूलैता है। हरे मन वत्र बीजन नाओ, बोए खेती लाए मनुआ, पलो समो सुआओ। रहाओ खोए खेड़ा परम मन का, सदगुर सरनी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया, सोई कार कमाए। पाओ लागा गोबिंद स्यों, काल पाई थाए। खेत मेरे जमया, निखुट न कबहू जाए। पाया अमोल पदार्थो, छोड़ न कतहू जाए। कहो नानक सुख पाया, तृप्त रहे आगाए। मारू महला पंजवा, फूटो अंडा परम का, मने पयो परगास। काटी बेरी पगहते, गुर कीनी बंद खलास। आवन जान रहे हो, तप्त कड़ा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। रहाओ जब ते साधु संग पया, तो छोड़ गए निगहार। जिसकी अटक तिस्ते छुट्टी, तो कहां करे कोटवार। चूका पारा कर्म का, होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर की ने तरमा। सच थान सच बैठका, सच स्वाओ बनाया। सच पूंजी सच वखरो, नानक कर पाया। मारू महला पंजवा, बेद पुकारे मुख ते पंडित, का ममन का माठा। मोनी होए बैठा एकांति, हृदय कल्पन गाठा। होए उदासी गृह उता चलियो, छुटके नाही नाठा। जी की कह पै बात कहा, आप मुक्त मौको प्रमेले, ऐसो कहा लहा। रहाओ तपसी करके देही सादी, मनुआ दे दस्ताना। ब्रह्मचार ब्रह्म चज कीना, हृदय पया गुमाना। सन्यासी होए कह तीर्थ प्रम्यो, उसमें क्रोध बिगाना। कुंगर बांध पए रामदासा, रोटियन के उपावा। बर्त नेम कर्म खटकीने, बाहर पेख दिखावा। गीत नाद मुख राग आलापे, मन हर हर गावा। हर सोग लो मोह रहत है, निर्मल हर के संता। तिन की तूड़ पाए मन मेरा, जा दया करे भगवंता। कहो नानक गुर पूरा मिलिया, ता उतरी मन की चिंता। मेरा अंतर जामी हर राया, सबके जाने मेरे जी का प्रीतम। बिसर गए बकबाया। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा, कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा। जा को नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर्जन मैं गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवे तब ही पत पूरी। बिसरत रलिए खाक। रहाओ रूप रंग खुशिया मन पोगण, ते छिद्र विकारा। हर का नाम निदान कल्याणा, सुख सहजो सारा। माया रंग बिरंग खिने मैं, जो बद्र की छाया। से लाल पहे गूढ़े रंग राते, जिन गुरमिल हर हर गाया।
ਊਚ ਮੂਚਿਆ ਪਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਗਮ ਦਰਬਾਰਾ ਨਾਮੋ ਵਡਿਆਈ।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखान हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मन तन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवां पुरख

व्यापत उसन नासीत, मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाओ। कृपाल दयाल गोपाल गोविंद, जो जपै ते सीध, नवल नवतन चतर सुंदर, मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवां, चलत बैस्त सोवत जागत, गुरमंत्र हृदय चितार, चरण सरन पज संग साधु, भव सागर उतरै पार। मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों, अवर सगल विसार रहाओ। जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू अपने आप निवार, गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवां, तज आप बिनसी ताप, रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा, कर कृपा जिस दियो। मेरे मन नाम अमृत पियो, आन साध विसार होछे, अमर जुग जुग जियो रहाओ। नाम एक रस रंग नामा, नाम लागी लियो, मीत साजन सखा बंधपो, हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवां, प्रतपाल माता उदर राखै, लगन देत ना सेक, सोई स्वामी इहां राखै, बूद बूझ बुद्ध बबेक, मेरे मन नाम की कर टेक, तिसे बूझ जंतु किया, प्रभ करण कर नेक रहाओ। चेत मन में तज सियाणप, छोड़ सगले भेख, सिमर हर हर सदा नानक, तरे कई अनेक। मारू महला पंजवां, पतत पावन नाम जाको, अनाथ को है ना।

रहाओ। साध संगत गुण उच्चारण हर नाम अमृत पाथ, करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ। मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़ै जी देही विच जियो आए पया। जिथै अगन पखै पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे, सास सास माले सोई ओथै खसम छड़ाए लया। विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया, आवै जाए पवाई है जोनी रहन किथी थाए पया। मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे, जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया। मारू महला पंजवां वैदो ना वाई भैनो ना पाई, एको सहाई राम है कीता जिसो होवै। पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान है। घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है, आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जा का काम है। भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा, करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा, हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो, गन का हूं गत पाई रहाओ। पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुधे आई, ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई, कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई। मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई, सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ। काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई। जो संपत्ति अपनी करमानी छन में पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई। मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड पर्यो सिर ऊपर तब सुब तै जाग्यो, कहां हो तो अब कै पछताए छूटत नाहन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट में जब गुर चरणन अनराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस।

माया तारी कर कर मांगे जग प्रभु दय मन अंधे पतहारी परम भुलाना शब्द न चीने जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूझे बाहर पुअर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे 68 तीर्थ

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त न होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख

ऐसा जय गुण प्रगासंग जति सति संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लिख है। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाल है पार कर जो है कर नहीं पल है। काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन स्यों लूझै। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपव बाल सिखाई है। आपे सुरग मच पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है। वेदक तेबी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल्यो पाए समाए अलखना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे कोई ना काटे अब गुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है। भूले चूके मार्ग पावे या भुलाए तू है समझावे।

द्वारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रव आपे, परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप या भुल ना कबहू भुला, आपे मेहर दया पदाता, ना किसै को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई, सब सह दाता तिल ना तुमाई, भरपुर धार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमया पार, साचे सृजन हार मुरार, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिलै मेलाई है। ब्रह्मा विश्रमहेश द्वार है, उबे सेवै लख्या पार है, होर केती दर दिसै बिल लांदी, मैं गणत ना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी, होर ना दिसै बेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावां, मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कह बेनंती, दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुरमत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, घर वार सहज न जाना शोहर, बिन पर नींद न पाई है। अंतर अग्न जलै भड़क हारे, मनमुख तके कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है, साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे, तस्कर पंचो शब्द संघारे, ज्ञान खड़गलै मन से लूजै, मनसा मनै समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूर्त सूरत कर या पारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, या तुम राम सखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना परथाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिलै वडाई है। आपो पाया जगत सबाया, जिन सिर आ तिन तंदे लाया, सच्चे उपर अवरना दिसै, साचे कीमत पाई है। एथे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा तंदू कारे, बाजी खेल गए बाजी गार, जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वड्याई, निरपो मन वस्या लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी, त्रिपवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिलै सुख पावा, साचे साचा तख्त वडाई, हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीय सहसा जीय, क्यों सुख पावै दूवै तीय, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहा मन राता, तिसकी ओट कही सुख पाया, मंत्र मैल न काई है। जीव रसायन साचै राती, हर प्रभ संगी पौ न प्राती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देहे तू है मन पावै, तुझ ही स्यो बने आई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तू सालाही, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला, आज उगादी अपर अपार है, आद निरंजन खसम हमार है, साचे जो जुगत विचारी, साचे ताड़ी लाई है। केतड़िया जुगत तंदूकार है, ताड़ी लाई सृजनहार है, सच नाम सची वड्याई, साचे तख्त वडाई है। सत जुग सत संतोख शरीरा, सत सत वरत गहर गंभीरा, सच्चा साहिब सच परख है, साचा हुक्म चलाई है। सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का शब्द मने सो सूरा, साची दरगह साच निवासा, मन है हुक्म रजाई है।
ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਨ ਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਸੁੱਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਬਚੈ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਗੈ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਰੀਜੈ। ਬਾਂਦੇ ਆਵੈ ਬਾਂਦੇ ਜਾਵੈ, ਸੋਜੀ ਬੂਝਣਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ। ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਅਹਿਨਿਸ ਭਗਤ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਜਿਉ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ। ਹੱਠ ਨਿਗਰੈ ਅਪਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਿਰੰਦਾ, ਨਾ ਜਮ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੈ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਾ ਸੰਖ ਉਧਾਰੇ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਮੈਲ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੈ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਚੇ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਬਦ ਪਤੀਜੈ ਅਲਾਖਿਆ ਭੇਵਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਖਸ਼ ਲਏ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।

मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के तेजग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही। गुर की सेवा मुक्त परायण, अंधन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौतावो, जो इच्छो सोई फल पावो। साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे। सब तेरी कुदरत तू सिर सरदाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए। हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत न काई। हाँ मैं मार

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख सीर सनाहा है। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चा ओ महा है। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा है। सबको बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्म

सुन कलाय परंपरधारी आप निरालमो अप्रियापारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएगा पौन पानी सुनै ते साजे सृष्टियो पाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जो तुम्हारी सुन्ने कला रहाएगा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश्यो पाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गहनारे तिसकी जोत तिरपमन सारे सुन

पाए त्रिभवन साज मेखली माया आपो पाए पाएगा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत की आसर करता है बिस्मा सब देखाएगा सुनो रात दिन सदुए किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमरा तीता गुरमुख नहीं कर पाएगा साम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ता की कीमत कह ना सके को त्यों बोले ज्यो बोलाएगा सुनो सबत पता लियो पाए सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया अपरंपर सब तेरो किया कमाएगा रज तम सतकल तेरी छाया जन्म मरण हमें दुख पाया जिसनों कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएगा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्टि उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिख

अनहदरात अंजन सार निरंजन जाने सर्ब निरंजन राया। दुख पै पंजन प्रभ अविनासी रो कटे काटी जम फासी। नानक हर प्रभ सो पहु पंजन गुर मिलिया हर प्रभ पाया। कालै कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाण। आपे जाने आप पछाण सब तिसका चोज सबाया। आपे सहो आपे वणजारा आपे परखे परखणहारा। आपे कसव कसवटी लाए आपे कीमत पाया। आप दयाल दया प्रवतारी घट घट रव रहा बनवारी। पुरख अतीत वसै नेह केवल गुरपुरख है पुरख मिलाया। प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मिटा एक दिखाए। आसा माहे निराल मजोनी कुल निरंजन गाया। हाउ मैं मेट शब्द सुख होई आ विचारे ज्ञानी सोई। नानक हर जसो हर गुण लाहा सतसंगत सच फल पाया। मारू महला पहला सच कहो सच्चै कर रहना। जीवत मरो पवजल जग तरना। गुर बोयथ गुर बेड़ी तुलहा मन हर जा पार लंगाया। हाउ मैं ममता लोभ विनाशन नाउ दर मुक्ते दसवें आसन। ऊपर परै परै अपरंपर जिने आपे आप पाया। गुरमत लेवो हर लिव तरियै अकल गाय जमते क्या डरियै। जत जत देखो ताता तुम ही अवरना दुतिया गाया। सच हर नाम सच है सरना सच गुर शब्द जितै लग तरना। अकथ कथै देखै अपरंपर फुन गर्भ न जो नी जाया। सच बिन सत संतोख ना पावै बिन गुर मुक्त न आवै जावै। मूल मंत्र हर नाम रसायण कहो नानक पूरा पाया। सच बिन भवजल जाए ना तरिया एहो समुंद अथाहो महाबिख भरिया। रहया तीत गुरमत ले उपर हर निरपो कै कर पाया। झूठी जग हित की चतराई बिलमना लागै आवै जाई। नाम विसार चले अभिमानी उपजै बिन सिख पाया। उपजै बिनसै बंधन बंदे हमै माया के गलफंदे। जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया। गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई है बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत लेहो तरो भवद उतर मुक्त पाए सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमुक्त लेहो परमपत पाई है नानक गुर परम चुकाया। गुरमत लेहो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मुरारी। जमके फाहे कट हर जप अकुल निरंजन पाया। गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अग्नि वार समाई। मनमुख नाम जपो जग जीवन हृदय अंतर लख लखाया। गुरमुख बूझै शब्द पतीजै उस निंदा किसकी कीजै। चीनो आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन भाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूझो शब्द पछाणो। घट घट पोगे पुगण हारा रहया तीस सबाया। गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देख ऊंचा। श्रवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया। मारू महला पहला काम क्रोध पर हर पर निंदा। लब लोभ तज हो निचिंदा भ्रम का संगल तो निराला। हर अंतर हर रस पाया। निस दामन ज्यो चमक चंदायन देखै एहनस ज्योत निरंतर पेखै। आनंद

सबना सार करे जग जीवन, जिन अपना आया पछाता है, जिन ब्रह्मा विष्णु सियो पाए, सिर सिर तंदा आपे लाए, जिस पावै तिस आपे मेले, जिन गुरमुखे को जाता है। आवागौण है संसारा, माया मोह बहुत चितै बिकारा, थिर साचा सा लाही सदही, जिन गुर का शब्द पछाता है। एक मूल लगे ओनी सुख पाया, डाली लागे तिनी जन्म गवाया, अमृत फाल तिन जन कौ लागे, जो बोले अमृत बाता है। हम गुण नाही क्या बोले बोल, तू सबना देखे तो लै तोल, जो पावे त्यों राखै रहना, गुरमुखे को जाता है। जा तुद पाणा ता सच्ची कार लाए, अवगण छोड़ गुण माए समाए, गुण में एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछाता है। जै देखा तै एको सोई, दूजी दुरमत शब्दे खोई, एक समय प्रभ एक समाना, अपना रंग सदराता है। काया कमल है कुमलाना, मन मुख शब्द ना बुझे आना, गुर प्रसादी काया खोजे, पाए जग जीवन दाता है। कोट गही के पाप निवारे, सदा हर जियो रखे उर तारे, जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है। मन मुख ज्ञान कथे ना होई, फिर आवे ठौर ना कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुजगु एको जाता है। मन मुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाए, गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुखदाता है। जै देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड़ियाई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नदरी तोले तोलो, जी जंत सब सरन तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवै तुर तेरी, मरै न जमै चूकै फेरी, साचे गुण गावै दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जग तो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वरत संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे, मनमुख भरम भुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एक

मनमुख पूला ठौर ना पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए। बिख्या राते बिख्या खोजै, मर जन्मे दुख ताहा है। आपे आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे। तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे लखा था है। बिन गुरदाते कोई ना पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए। गुर कृपा ते कट अंतर वसिया, सबदे सच सलाहा है। से जन मिले तुरे आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए। नानक जन गुण गावे नित साचे, गुण गावे गुणी समाहा है। मारू महला तीजा, निचल एक सदा सच सोई। पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा ते आयन। गुरमत सील सन्नाहा है, अंदर रंग सदा सचियारा। गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वसिया कट अंतर। छोड़िया माया का लाहा है, रैयत राजे दुरमत दोई। बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक ते आयन सदा सुख पायन। निहचल राज तनाहा है, आवन जाना रखे ना कोई। जमन मरण तिसै ते होई, गुरमुख साचा सदा ते आवो। गत मुक्त तिसै ते पाहा है, सच संयम सतगुरु द्वारै। हम मैं क्रोध शब्द निवारै, सतगुर सेव सदा सुख पाईऐ। सीर संतोख सब ताहा है, हम मैं मोह उपजै संसारा। सब जग बिनसै नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईऐ। नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द सुहाया। पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कार्य सच नाम सुहेला। बिन शब्द कार्य कहा है, खिन मैं हसै खिन मैं रोवै। दूजी दुर्मत कार्य ना होवै, संजोग विजोग करतै लिख पाए। कीर्तना चलै चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए। हर स्यों सदी रह समाए, गुर कृपा ते मिलै वडियाई। हम मैं रोग ना ताहा है, रस कस खाए पिंड वधाए। पेख करै गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी। बिष्टा माहे समाहा है, वेद पढ़ै पढ़वाद बखाणै। घट मैं ब्रह्म ते शब्द ना पछाणै। गुरमुख होवै सो तत् बिलोवै, रसना हर रस्ता है। घर वथ छोड़ै बाहर तावै, मन मुख अंधे साधना पावै। अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल ना ताहा है। मनमुख देही परम पतारो, दुर्मत मरै नित होए खुवारो। काम क्रोध मन दूजै लाया, सुपने सुख ना ताहा है। कंचन देही शब्द पतारो, अंदन भोग भोगे हर स्यों प्यारो। महला अंदर गैर महल पाए, पाणा बुझ समाहा है। आपे देवै देवन हारा, तिस आगे नहीं किसै का चारा। आपे बक्से शब्द मिलाए, तिसदा शब्द अथाहा है। जियो पिंड सब है तिस केरा, सच्चा साहिब ठाकर मेरा। नानक गुरबाणी हर पाया, हर जप जाप समाहा है। मारू महला तीजा, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कार करे प्रभ पावै। गुरमुख पूरा पाएंदा, गुरमुख मनुआ उल्ट परावै। गुरमुख बाणी नाद बजावै, गुरमुख सच रते बैरागी। निज कर वासा पाएंदा, गुर की साखी अमृत पाखी। सच्चै सबदे सच सुपाखी, सदा सच रंग राता मन मेरा। सच्चे सच समाएंदा, गुरमुख मन निर्मल सत सरण आवै। मैल न लागै सच समावै, सचो सच कमावै सदी।